मुगल बन लग गया उड़ावे ओड़े ओड़े नाम रेम डांस मुगल बन लग गया मगर अगेब जर कल जाए स्ट्रॉंग मगर सिंग उड़ावे एंड प्रैक्टिस नंगड़ी कल जाए वार वी करो.